मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव फरूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरीप न थी समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप

0: This is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: Leica Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे।

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार, असंख्य सूर मोह पक्षार, असंख्य मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बोल लख हुए लख हुए लखवीश लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
2: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती.
3: इसे हमेशा याद रखना.
4: काश कोई आ जाए उन्हें समझाए.
5: Usayoni every day at 6 PM on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री. परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Forgotten memories refreshed. Like a gold.

0: Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208782833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
0: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 0192322727274 बुक योर टेबल टुडे
2: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
3: Lights on, shutters up, staff ready.
2: But today's customers don't start on the high street.
3: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
2: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
3: They walk into your competitors.
2: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
3: Hearty Hanks. The digital agency that doesn't play safe.
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: Dosti Masti અને ઇમોશન્સ ની એક અનોખી સ્ટોરી
7: સામડે કામ કર મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ એટલે
6: સોલ સૂત્ર પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કર્ણિક
8: તું ગાંડો છે આગળ વાળો બ્રેક મારે તો પાછળ વાળો બ્રેક મારે છે યાર
6: તારી મારી દોસ્તી સ્ટારિંગ વિરાજ ખિલાણી દીપ વૈદ્ય વિશાલ પારેખ એન્ડ વિશ્વા જોશી રિલીઝિંગ ફ્રાઈડે 25 સપ્ટેમ્બર યુકે રિલીઝ ડિટેલ્સ માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો બકરાનિયા મીડિયા
9: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
10: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
11: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
13: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
16: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल
15: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
3: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
4: Like a goon. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे लाइका रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस ग्रेटर लंदन।

0: your tickets from the venue box office, brought to you by Sanathan Events. And of course, us here, Like Radio Network, exclusive radio partner. It's Kavita Krishnamurthy.
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: दिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: है
1: Leica Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
0: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
0: Visit TravelHubWorld.com.
3: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।
4: लंडन हलो गरबे गुमवा श्री 27 गाम पाटीदार समाज यूरोप साथे मानो नवरात्रि भारत ना लाइव बैंड साथे 10 थी 20 अक्टूबर सांजे 7:30 थी एट 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली। एडल्ट टिकट्स 10 पाउंड्स 16-17 ने 18 अक्टूबर 15 पाउंड्स 5 थी 10 वर्ष ना बाड़को ने 5 पाउंड्स अंडर 5 फ्री 11 रात नो सीजन पास 100 पाउंड्स रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा एटले बेस्ट बेस्ट
5: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
6: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए એટલે
5: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
7: तू अंडो छे आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछड़ वालों ब्रेक मारे ने यार तारी मारी
5: दोस्ती स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी रिलीजिंग फ्राइडे 25 सितंबर यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।
8: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। बृहस्पतिवार थर्सडे सितंबर महीने की 24 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात। और बहनों भाइयों, दिन के साथ जुड़ी कुछ बातें, कुछ इतिहास से लेंगे, कुछ महापुरुषों के जीवन। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरा नाम है रवि शर्मा, मेरा काम है आपका दिल बहलाना। लेकिन साहब, लोगों को खुश करने के चक्कर में कभी कभी आप लोगों को नाराज भी कर बैठते हैं। बस इसी बात पे यारों को खफा रखा है, अपना अंदाज जरा उनसे जुदा रखा है। रात ने अपनी हकीकत को छुपाने के लिए अपने दामन पे सितारों को सजा रखा है। अरे उनको क्या खाक सजा देंगे जमाने वाले, जिनको एहसास ने सूली पे चढ़ा रखा है। लोग इंसान को दामन से झटक देते हैं, हमने तो पत्थर को भी इस सीने से लगा रखा है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica Gold. Gold. Reminisce those classics.
0: वो हमें मिले ना मिले उनकी मर्जी, हमने तो उनको अपने सीने से लगा रखा है।

0: तो भाई ऐसे होती है धमाकेदार शुरुआत मनोरंजन प्रोग्राम की लाइका गोल्ड पर, लाइका रेडियो नेटवर्क के इस भाई रेडियो पर। और अब आज के दिन का इतिहास देखते हैं, देखते हैं कि आज किसका जन्म हुआ, किसकी बड़े आदमी किसी व्यक्ति की महापुरुष की पुण्यतिथि है, या फिर आज कोई ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र ज़रूरी हो, ये सब देखते हैं। और आइए बता दूं आपको कि 10:30 के आसपास आप आज के प्रमुख समाचार सुनेंगे। 11 बजे अंग्रेजी में खबरें होंगी और उसके बाद होगा थॉट फॉर द डे, आज का विचार जिसे हम कहते हैं चिंतन। और बहनों भाइयों दोपहर बाद 1 बजे तक हमारी आपकी ये मुलाकात जारी रहेगी। आज है 26 सितंबर, भारत की भाई स्पेस यान ने जो है मंगल ग्रह पर प्रवेश किया था और पहली ही कोशिश में वो कामयाब हो गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। इसरो को बहुत बधाइयाँ मिली थी, आई थिंक सन 2013 या 2014 की बात है, देख के बताऊंगा कि ये एक कारनामा किया था भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, कि अपनी पहली कोशिश में, किसी और देश से ऐसा नहीं हुआ था, भारत ऐसा पहला देश था जिसने अपनी पहली कोशिश में अपना जो है स्पेस यान उसमें मंगल ग्रह पर पहुंचाया था पहली बार में। और इसके अलावा भाई आज के दिन के साथ जुड़ी कुछ और बातें भी करेंगे, जिक्र उनका आगे चल करके। पहले देखें आज SBI UK 1 पाउंड के बदले कितने भारतीय रुपए दे रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK giving 126.6 Indian rupees for 1 pound. 126 rupees aur 60 paise ka rate chal raha hai. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: When you have a better laptop like the Dell XPS powered by Intel Core, it feels better. With thin and light design, it feels smooth. With a touchscreen, it feels fast and precise. And with long-lasting battery life, it feels like non-stop energy. Yeah, that's definitely better. Built for those who want better. The Dell XPS. Built for you.
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: Co food containers are recyclable, reusable, and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
3: हमारी रक्षक है। वो
4: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
5: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
4: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
6: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
7: लंदन, आर यू रेडी? राघव एंड्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां दिस डिसम्बर।
8: दिल ने ये कहा है दिल से
9: बोल चूड़िया।
7: One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
11: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
13: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
14: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
14: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
16: sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
17: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
18: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
19: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
20: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
21: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: तुमसे जुदा।
1: असद भोपाली का लिखा गीत, उषा खन्ना का संगीत से संवारा गीत, मोहम्मद रफी साहब के स्वर में। आपने सुना ये गीत एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से। न गरज किसी से नवास्ता मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से तेरी फिक्र से तेरी याद से तेरे नाम से। कभी सोचना भी नहीं मुझसे अलग होने का।

0: ये सब खनकते सिक्के हैं, इनमें खरा कोई नहीं। यूं तो कहते हैं कि दोस्त मैं तुम पे मरता हूं, पर मरा कोई नहीं। वैसे तो सब मरने को तैयार नजर आते हैं, आज खुद गर्जी के सब प्यार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। ठीक है साहब, कुछ भी कहिए, दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको, निभाने वाले भी और रिश्ता जोड़कर भुलाने वाले भी। रफी साहब की आवाज़ में ये गीत सुनवाते हुए हम आ गए हैं नज़दीक भाई आज के प्रमुख समाचारों के। ये गीत कौन पहुंचा रहे थे आप तक?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like gold.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारार ने दावा किया है कि एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के उन 10 ठिकानों पर हमला किया है जहां से ड्रोन स्टोर किए गए थे, जहां पर और लॉन्च किए जा रहे थे। पाकिस्तान ने उन जगहों का कोई ब्यौरा नहीं दिया जहां हमले किए गए, लेकिन यह माना है कि उन्होंने अटैक किए। इससे पहले पाकिस्तान ने कल बुधवार को दावा किया था कि अफगानिस्तान से उसके हवाई इलाके में एंटर करने वाले 8 ड्रोन्स को मार गिराया गया था। तालिबान सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सिदिकुअल्ला नुसरत ने कल बताया था कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की ओर से कोई हमला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अफगान एयरफोर्स ने अभी तक कोई ड्रोन हमला नहीं किया है और जवाबी कार्रवाई का समय और स्वरूप अफगान एयरफोर्स द्वारा ही तय किया जाएगा। उधर अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के खोस्ट के गवर्नर और उनके स्पोक्स पर्सन के माध्यम से कहा है उन्होंने कि मुस्तगफर गुरबुज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हमले सुबह करीब 3:30 बजे हुए और गुरबुज जिले के कैंप गुल्लन इलाके के साथ साथ इस्माइल खेल और मंदोजी जिलों के कुछ इलाकों को निशाना बनाया गया। इनमें कोई जख्मी नहीं हुआ। भारत से आने वाली खबरों में बिहार में जमुई के बाद समस्तीपुर में भी एक लड़की के साथ सेक्सुअल टॉर्चर की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जगत सिंहपुर बांध इलाके में दिन दहाड़े एक लड़की को परेशान करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और FIR दर्ज की जा चुकी है। अमेरिका में एक जज ने व्हाइट हाउस को 3 समाचार ऑर्गेनाइजेशंस पर लगाई गई रोक को तुरंत हटाने का आदेश जारी किया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते इन समाचार एजेंसीज को व्हाइट हाउस में एंटर करने से रोक दिया था। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की एक अदालत ने इस पाबंदी के खिलाफ टेम्परेरी रोक का आदेश जारी किया है। इसके तहत CNN, MS नाउ और पॉलिटिको की व्हाइट हाउस तक पहुंच 14 दिनों के लिए बहाल करनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया है। ग्रैंड बेस एंड्रयूज में शी जिनपिंग का रेड कार्पेट और फौजी हवाई जहाजों के फ्लाई पास्ट के साथ वेलकम किया गया। स्वागत समारोह के दौरान 100 फुट लंबा रेड कार्पेट बिछाया गया था और शी के आगमन के मौके पर 2 B-1 बॉम्बर विमानों ने ऊपर से उड़ान भरी। आज थर्सडे को ट्रंप और फर्स्ट लेडी मिसेस ट्रंप व्हाइट हाउस में शी जिनपिंग और पेंग लियान की मेजबानी करेंगे। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच 2 तरफा बैठकें होंगी। अमेरिकी और चीनी अफसरान के साथ टेक्नोलॉजी के फील्ड में नेता राजकीय रात्रि भोज यानी डिनर जो है उसमें शामिल होंगे। शी जिनपिंग और पेंग लियान व्हाइट हाउस में ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के साथ कल एक चाय पर बैठक करेंगे और इसके बाद शी जिनपिंग और पेंग लियान ज्वाइंट बेस एंड्रयूज रवाना होंगे। कल उनकी वापसी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि ओपन AI के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की एक वेबसाइट में घुसपैठ की है। एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सर्विसेज योजना की मेडिकेयर से जुड़े गैर सेंसिटिव डेटा वाले एक स्टैटिस्टिक्स पोर्टल को हैक किया है। अल्ब्रीज के मुताबिक ये सेंध जून में लगी थी, लेकिन ओपन एआई को इसकी जानकारी अगस्त में हुई और उसने 10 सितंबर तक सरकार को इसकी सूचना नहीं दी। ओपन एआई का कहना है कि ऐसा नहीं माना जा रहा है कि किसी मरीज के रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई गई थी। हेल्थ सर्विसेज में ये घटना घटी। भारत से आने वाली खबरों में दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में जेवर के पास लगी आग, 9 यात्रियों की मौत हो गई, इनमें एक महिला शामिल थी। जेवर नया एयरपोर्ट पुलिस के हवाले से बताया गया है कि गुरुवार तड़के आज सुबह सुबह ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्री मारे गए। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित संघर्ष को लेकर के एक बयान जारी किया है, पॉसिबल टेंशन। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद समेत अगर दुनिया भर में पॉसिबल स्ट्रगल्स को निपटने के लिए एक प्रभावी इंटरनेशनल व्यवस्था होती, कोई ऐसा बेहद अच्छा इंतजाम होता तो अच्छा होता। रूबियो ने कल पत्रकारों से कहा कि हम इंटरनेशनल व्यवस्था की उपयोगिता, यूटिलाइजेशन देखते हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में काफी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उन पॉसिबिलिटीज के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। और भाई, एशियाई खेलों से खबर आई है। जापान के नागोया में हो रहे एशियन गेम्स में आज भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबीना देवी नाओरम ने महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग की वुशु स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है। अमेरिकी विमान वाहक यानी एयर कैरियर एरोप्लेन कैरियर पोत अब्राहिम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के कम 8 नाविकों ने आत्महत्या की कोशिश की है, सुसाइड करने की। अमेरिकी नेवी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हांगकांग के एक पत्र से ये जानकारी मिली है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लगभग 10 महीने पहले मिडल ईस्ट में तैनात किया गया था और वो रिकॉर्ड समय तक तैनाती में रहा। और खेलों से जुड़ी एक और खबर, भारत ने साउथ कोरिया को 8-2 से पराजित किया। एशियाई खेलों में लगातार तीसरी जीत है भारत की। हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं हम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2026 में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। हॉकी इंडिया के अनुसार भारत ने मैच के लिए पहले हाफ में 5-0 की बढ़त बना ली थी। टीम ने दूसरे हाफ में 3 और गोल किए और जबकि साउथ कोरिया 2 गोल ही कर सके। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और जर्नलिज्म की दुनिया से निकलकर अब फिर से संगीत के संसार में लौट आइए। आइए सुनवाते हैं आवारागर्दी भरा एक गीत, एसपी सुब्रमण्यम।

भी आपकी हुई या नहीं ये भी बता दीजिए, या फिर ये चाहत, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये करार एक तरफा ही रहा। अब आप कहेंगे आप ही ने तो कहा था कि प्यार तो होता ही एक तरफा है, असली प्यार तो वही होता है जो बदले में प्यार न चाहे, बस

0: वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क. दिस इज रवि शर्मा विद यू अंटिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून. और बहनों भाइयों, आज के मनोरंजन में अब समय हो गया है चिंतन का. थॉट फॉर द डे, आज का विचार. आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं डॉक्टर अलका जी का भेजा आलेख. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर अलका डेंटिस्ट हैं, साउथ लंदन से, सटन से उन्होंने भिजवाया है. लिखती है, एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं कवि बनना चाहता हूं, लेखक बनना चाहता हूं. तो कवि ने उसको सलाह दी, पहले भावुक बन के दिखाइए, दूसरों के दर्द को दुख को महसूस करके दिखाइए, फिर वो दर्द कागज पर उतारिए, देखना वो कविता बन जाएगी. क्या? हाँ, अरे भावनाओं का ही तो चित्रण है काव्य. और भावनाएं भी संवेदनशील. किसी के दर्द को, किसी के दुख को अपनाइए, फिर उसे कागज पर लिखिए, कविता निकलेगी. क्योंकि वियोगी ही तो था कोई पहला कवि. वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान. वो आंखों से जो निकलते हैं दूसरे के दर्द से प्रभावित होकर, वो आंसू नहीं कविता ही होती है. एक बार की घटना है ये, और ये घटना है दीन दुखियों से बहुत प्रेम करने वाले और उनके बारे में सशक्त कविताएं लिखने वाले महाप्राण निराला जी के जीवन की. सुना है नाम आपने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. जब वो लिखते थे तो कविता लोगों के हृदय में तूफान उठा देती थी. वो तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर. वो तोड़ती पत्थर, पेठ पीठ मिलकर हैं दोनों एक, चल रहा लकुटिया टेक. कैसा चित्रण है, भूख का, गरीबी का, प्रताड़ना का. एक बार कहते हैं निराला जी अपने एक पब्लिशर के पास पैसा लेने गए. जीरो रोड इलाहाबाद जो प्रयागराज है, वहां से उन्हें तकरीबन 300 रुपए मिले. उन्होंने रुपए अपनी आंटी में बांधे और चल पड़े दारागंज की तरफ जहां वो रहते थे. अब भाई उन दिनों, उस जमाने में 300 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी. रास्ते में अलोपी बाग चौराहे के पास एक भिखारिन सामने पड़ गई. बोली, बेटा बेटा इस भूखी प्यासी भिखारिन को कुछ दे दो, दे दो, दो दिन से कुछ नहीं खाया है. निराला जी छिटक कर खड़े हो गए और उसके पास झुककर पूछने लगे, माता जी कितने दिन से नहीं खाया? दो दिन से नहीं खाया बेटा. मां एक बात बताओ, तुम्हें कितने पैसे मिल जाए तो तुम भीख मांगना छोड़ दोगी? भिखारी ने सोचा कि बाबू मजाक कर रहे हैं. बोली, बेटा क्यों हंसी करते हो? निराला जी गंभीर उठे. देखिए, आपने मुझे बेटा कहा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मां भीख नहीं मांग सकती.
1: चिंतन चिंतन,
0: इतना कहकर महाप्राण ने अपनी आंटी खोली और उसमें से पूरे के पूरे रुपए उस भिखारिन को देकर के आगे बढ़ गए. भिखारिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ. हैरानी से बस देखती चली गई. आवाज देनी चाहिए, कंठ अवरुद्ध हो गया, आवाज नहीं निकली. ऐसे होते हैं कवि, ऐसे बनती है कविता, ऐसे लिखे जाते हैं आलेख. कवि, कवि हृदय भावुक होता है, वो देना जानता है, मांगना नहीं। वो दूसरे के दर्द को महसूस करना जानता है, किसी को दर्द देना नहीं।

0: योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये आहें ये आंसू, ये वियोग ये दर्द, यही तो है काव्य कला। थैंक यू डॉक्टर अलका जी, चौधरी परिवार से, सर्बिटन से उन्होंने, साउथ लंदन से भिजवाया आज का आलेख। मुझे याद आ रहा है, मैंने भी एक बार सरस्वती माँ से प्रार्थना की थी कि मुझे कविता लिखने की कला में दक्षता चाहिए। मैं काव्य कला की रीत ना जानू, कैसे लिखूं तेरे गीत ना जानू, मेरे हृदय में भरो जज्बात माँ, मेरे सर पे धर दो हाथ माँ, सरस्वती माँ से प्रार्थना। काव्य हो, लेखन हो, साहित्य हो, हृदय को भावुक बनाइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवन की घटना आपने आज के चिंतन में सुनी। और बहनों भाइयों, आपको याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद आप सुन पाते हैं। आज के चिंतन में जो गीत आपने सुना, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म साजन बिना सुहागन, पहले उषा खन्ना जी की आवाज में और फिर यशुदास की आवाज में थोड़ा सा आपने गीत का ये हिस्सा सुना। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK promising that they are giving today's rate as 126.6 rupees for £1. Bharatiya Mudra mein 126 rupees 60 paise ek pound ke badle de rahe hain. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. TNC apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
4: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: दर्द में भी मजा होता है बहनों भाइयों, दर्द में भी सुकून होता है, और दर्द इतना मीठा हो सकता है कि उसे बार बार सुनने को जी चाहे। ऐसा होता है दर्द प्यार का, मोहब्बत का। और आपने दो गीत यादों से झांकते हुए सुने भाई। पहला लता जी की आवाज में था, आरजू फिल्म से बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, और अभी सुना वो जब याद आए बहुत याद आए, दैट वॉज फ्रॉम द फिल्म पारस मणि 1963। भाई ऐसे ऐसे गीत मैंने जैसा आपको बता चुका हूँ कि लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर ही सुनने को मिलेंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये तो बैक टू बैक संगीत के तहत आपने दो गीत सुने, और अब आगे बढ़ते हैं भाई ये बताते हुए कि एक दो अनाउंसमेंट सब आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तो कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार। इसके अलावा डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ। जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप। और भाई दूसरी भी एक इंफॉर्मेशन थी, वो है कि अगर आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो भाई मर्सिडीज बेंज की ओर से हम आपको एक ये जानकारी पहुंचाते हैं, जब आप खुद का बिजनेस चलाते हो और आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, आपकी रोजी रोटी का कारण है और आपकी रेपुटेशन सब कुछ उसी पर निर्भर करता है, तो इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैन्स लेकर आए हैं अप टाइम प्रॉमिस, आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेकों फायदों का एक पैकेज है, जिसे 2400 घंटे सातों दिन रोड साइड असिस्टेंस, ज़्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना और गाड़ी के रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के ख़राब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब अवेलेबल मर्सिडीज वैन्स वैन्स आपके साथ हैं। तो आज ही मर्सिडीज वैन्स जो वैन्स हैं बेंज के मर्सिडीज बेंज के वैन्स को इस टाइटल के तहत सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानकारी जुटाएं।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड अ पार्ट ऑफ द नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन द लाइक अ ग्रुप।
2: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। देखिए साहब, शब्द ना भी हो ना तो ये संगीत बता देता है कि इस अनुभूति में दर्द बसा है। और भाई, संगीत का थोड़ा सा रंग बदल दिया जाए तो पता चल जाता है कि ये वियोग का नहीं, ये मिलन का संगीत है, ये बेबसी का नहीं, खुशी का संगीत है। देखिए,

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Extra podcast update.
3: आपको बता दें भाई, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड नंबर 35 आ चुका है और जरूर देखिएगा आप अपने रेडियो स्टेशन के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके संघर्ष के बारे में, इसकी कामयाबियों के बारे में जानना चाहते हैं तो टाइटल है राज बदन यानी हमारे सीईओ, पाँच साल का शोकेस, होस्टेड बाय रूबी रजा एंड डोनी ब्रेस्को. राज बदन टॉक्स टू रूबी रजा एंड डोनी ब्रेस्को अबाउट स्टेपिंग इन टू द रोल ऑफ सीईओ ऑफ वन ऑफ ब्रिटेन्स लार्जेस्ट स्टेशन रेडियो नेटवर्क द लाइका रेडियो नेटवर्क एंड इज जर्नी बिहाइंड द टाइटल. भाई क्या बनाना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते थे और क्या कुछ बना पाए हैं और आगे आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या चेंजेस हैं वो ला चुके हैं आपके लाइका रेडियो नेटवर्क में. जानने के लिए, देखने के लिए मस्ट वॉच टाइटल राज बदन 5 ईयर्स शोकेस ऑन लाइका एक्स्ट्रा. और भाई लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
4: When you have a better laptop like the Dell XPS powered by Intel Core, it feels better. With thin and light design, it feels smooth. With a touchscreen, it feels fast and precise. And with long-lasting battery life,

0: 8782883 और विजिट travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
3: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
2: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
3: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
2: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
4: 0730 99 8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730 99 8823.
5: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
8: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
9: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
7: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November.
11: टू बुक कॉल 0208 514 54. Book online at Eventbrite.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
14: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
13: Rich, authentic taste every single time.
14: Royal Chai, brewed for business.
13: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
15: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208 951 0111.
16: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and

0: 2, 3. Reminisce those classics on Like a Gold.
1: और ये गीत हमें खबरों तक लेकर चलेगा, लेकिन ये गीत किसके नाम करें? भाई सुनीता जवेरी म्यूनिख में हमें सुन रही है, जर्मनी में, और कहती है कि कार्यक्रम में शामिल गीत बेहद पसंद है मुझे। वो जो गीत मधुबन खुशबू देता है बचपन से मेरा फेवरेट रहा है, आज के कार्यक्रम में आप ही के नाम कर देते हैं उसे। और साहब हमें बहुत सारे श्रोताओं के संदेश मिले, अगले घंटे में शामिल करेंगे।
2: सारे जमाने पे मौसम सुहाने।

जगदीश का कहना है दो गीतों ने तो रुला दिया आज, दोनों गीत वापस कर दीजिए, हम आपको हंसाने वाले और दे देंगे, पर कहते इतने प्यारे हैं हमने रख लिए।

0: और भाई खनकाने वाले डटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे दोपहर बाद एक बजे तक इस प्रोग्राम के साथ। अभी अभी आपने गीत सुना चूड़ियां खनकी, एंड दैट वाज संग भाई, किस कौन गा रही थी इस गीत को? मेरा ख्याल है इस गीत को गा रही थी कौन, साधना सरगम। हाँ, साधना सरगम गा रही थी भाई, साधना सरगम और सखियों की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। और अब भाई आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर के इतिहास में कई बातें दफन है। एक तो भाई रिजर्वेशन को लेकर के गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच एक बहुत बड़ा इशू था जो सोल्व हुआ था आज के दिन। और गांधी जी जो है जातिवाद को बढ़ाना नहीं, बंटवारे को ख़त्म करना चाहते थे, सभी जातियों के एक उसमें पिरोना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब जो है वो रिजर्वेशन के पक्ष में थे। और दोनों नेताओं के बीच बात में आज ही के दिन सहमति हुई थी आज़ादी से पहले। 24 सितंबर को जिन लोगों के जन्मदिन पड़ते हैं उनमें एक बड़ा प्रमुख नाम है राष्ट्रवादी महिला भिखाजी कामा। भाई भिखाई जी कामा जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थी, मैडम भिखाई जी कामा, बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी। 24 सितंबर 1861 में जन्मी थी और 13 अगस्त 1936 में उनका निधन हुआ था, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और भारतीय इतिहास में उनका नाम जो है वो शामिल है, उन्हें याद किया जाता है इस संघर्ष के लिए। उनके अलावा और भी कुछ लोगों के जन्मदिन है आज। भाई फिल्मी दुनिया में देखे तो राजेश खट्टर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, दिल्ली में जन्मे थे 1966 में। क्रिकेट को देखे तो महेंद्र अमरनाथ का जन्मदिन है आज, 1950 में जन्मे थे 24 सितंबर को पटियाला में। और भाई ये अमरनाथ फैमिली से, लाला अमरनाथ के बेटे राजेंद्र अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ के भाई। महेंद्र अमरनाथ 1983 की वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा थे और बड़े जाने माने खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के अपने दौर में। और साहब आज जन्मदिन मनाने वालों में हमारे हरियाणा की एक कांग्रेस नेता भी हैं, कुमारी शैलजा। शैलजा कुमारी से तो कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन हंसना नहीं, उनके पूज्य पिताश्री से संपर्क रहा, चौधरी दलबीर सिंह, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता रहे थे अपने समय में। और एक कार्यक्रम में हमने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया था रोहतक में, मुझे याद है भाई, बहुत पुरानी बात हो गई है। आज जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम असित सेन साहब का भी है, फिल्मी दुनिया में भाई असित सेन, वो कॉमेडियन नहीं, डायरेक्टर असित सेन बंगाल में ढाका में जन्मे थे आज ही के दिन 24 सितंबर 1922 में। और भाई आज अगर आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं, पैसे भिजवाना चाहें तो रेट अब भी अच्छा चल रहा है। एक पाउंड के बदले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK दे रहे हैं 126.6 रुपीस, 126 रुपए और 60 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold. Tum dena
3: saath mera. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
8: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
9: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
10: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
11: हमारी रक्षक है वो
12: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
13: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है ये
12: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
14: हैरो इंतजार खत्म मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स सिग्नेचर मसाला फिश लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना
15: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678
16: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भैनों भाइयों, Artist of the Week इस सप्ताह है कंठ कोकिला शारद पुत्री महान गायिका कविता कृष्णमूर्ति

आर्टिस्ट ऑफ द वीक कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब डोंट फॉरगेट द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे द 1st of November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेट।

0: आप भी इतना समझ लीजिए ये समझाने के बाद कि भाई इंसान मजबूर हो जाता है दिल के आ जाने के बाद। याद दिला दें आपको भाई, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
1: दिल का क्या करे साहिब।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: जिस दिन

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में माया फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। और इस गीत सुनकर ये क्या लिखा आपने गुरुदेव गांजा जी, लिखते हैं शर्मा जी सब लोग बीवी से डरते हैं, हम तो नहीं डरते भाई, खुल के अरे कहीं सुन तो नहीं रही होंगी रेडियो को। नहीं, इसमें डरने की क्या बात है साहब, और अगर डरते हैं तो अपनी बीवी से डरते हैं, किसी और की बीवी से नहीं डरते हैं।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danu Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
0: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
3: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए
4: એટલે
2: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
5: तू गांडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार
2: स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी रिलीजिंग फ्राइडे 25 सितंबर यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया
6: लंडन हालो गरबे गुमवा श्री 27 गाम पाटीदार समाज यूरोप साथे मानो नवरात्रि भारत ना लाइव बैंड साथे 10 थी 20 अक्टूबर सांजे 7:30 थी एट 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली एडल्ट टिकट्स £10 16-17 ने 18 अक्टूबर ए £15 5 थी 10 वर्ष ना बाड़को ने £5 अंडर 5 फ्री 11 रात नो सीजन पास £100 रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा एटले बेस्ट बेस्ट
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410 दैट्स 0208574-8410
8: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
3: और बहनों भाइयों, चलने का समय हुआ जाता है तो फिर आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो कोई दर्द भी ना हो, बस प्यार ही प्यार. चलेंगे जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पड़े. कहीं ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह.

जमी पे सब्जा महक रहा है, लहक रहा है, फलक पे बादल धुआं धुआं है, मगर जो दिल के मिजाज पूछो तो हमारे दिल का अजब समा है। ना ऐसे आने की आरजू थी और ना ऐसे जाना हमारी खुद थी, लेकिन जाना होगा क्योंकि बाली भाई स्टूडियो में आ चुके हैं। इजाजत दीजिए, हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय।

0: Johnny Brumba.
1: ओके सो दो गाने मैंने ऐसे ही शुरू किए जैसे जिसमें एकदम ठेका बजता है, यू नो, वो ढोलक का जो एक बीट जो होता ना, जिसके अंदर बंदा मोड़े हिलाना शुरू कर देता है, जैसे कि हमारे वंडरफुल फ्रेंड हु इज ऑल द वे इन स्कॉटलैंड, जगतार पाजी. He is usually in Vancouver, but at the moment he's in Scotland and he's enjoying his beautiful trip in Troon. It's Troon in Scotland. And welcome, Paji. Welcome to Great Britain. And I hope you come to London to meet us. We can invite you to our studios and you can come and say hi to everybody all the way from Vancouver to Scotland. And now he'll be coming to London. सो एक गाना जेड़ा सीगा ओ बिंदिया चमकूगी चूड़ी खणकूगी तेरी नींद उड़े ते हाड़ी उड़ जावे मैनू की. ये एक बार हुआ था, एक शादी में हम गए थे तो लड़की को सिंगर को बोला कि बिंदिया चमकेगी गाना उस जमाने में बहुत अच्छा चल रहा था 1970s में, यू नो. तो लड़की ने सिंगर ने शुरू किया, पाजी ने एक दो विस्की मार के कहा कि देखो जी मैं गया तुहानू मैं सिखाना किदां गाईदा है गाना. एंड देन ही केम एंड ही टुक द माइक एंड ही सेड ओ बिंदिया चमकूगी ओ चूड़ी खणकूगी ओ तेरी नींद उड़े ते हाड़ी उड़ जावे मैनू की ओ गजरा मैकूगा ओ गजरा चाकूगा. एंड पीपल लव्ड इट. क्या पैसे वारे थे सब लोगों ने, उसने वो लेडी सिंगर को दे दिए, बोले देख मैं कमाया तेरे को दे दिया सब, यू नो, ऐसे गाई दा. बड़ा अच्छा लगा, आज तक मुझे ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ ये वाकया मुझे याद है. तो पाजी नू मैं लभ रहा, किसी दिन मैं इत्थे ले आवांगा. तो जगतार पाजी जे गाना आंदा होवे तुहानू ते तुसी इत्थे स्टूडियो च आके गालियो साडे वास्ते. बाली ब्रह्मट on Like a Gold with Gold Afternoons in full form. In the second hour, we're going to have a tribute. There were three sisters, Travancore sisters. Usme se jo middle wali thi, uska tribute hum karenge. Sunte rahiyega, jude rahiyega.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And looking at the rates which fluctuate quite often, which are the SBI UK rates, and I'll give you the latest one that is in now. Your £1 in British sterling can get you up to 126.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
4: This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour 24-hour line.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
0: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
0: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन
11: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575 केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD प्लीज कॉल ऑन 07466997575
12: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
13: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
12: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
13: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
12: ICICI Bank UK, transfer now. Celebrate together.
14: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. DNC's
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
15: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
17: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
18: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
19: Leica Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइका gold.com पे
20: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: कितना खूबसूरत गाना था जो आपने अभी सुना मुकेश जी की आवाज़ में. एंड दैट वाज श्रीमान सत्यवादी 1960 की जो फिल्म थी उसमें खूबसूरती से गाया मुकेश जी ने. आगे जाते हुए मैं एक खुशखबरी और सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा. Okay, final few days to go to the Diwali story, brought to you by Sanatan Events, an exclusive radio partner like our radio network. It takes place at the Ovo Wembley Arena on Sunday, 27 September. Doors open at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main performance from 6:15 p.m. to 9:30 p.m. 6:15 p.m. to 9:30 p.m. Tickets are available from www.diwalistory.com.
3: Ye hai Leica Gold.
4: To Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons, proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste, and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
9: तो आइए गॉडफादर एंड को, विवेक हाउस बार एंड किचन.
8: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
10: हमारी रक्षक है वो.
11: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
12: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
11: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया, इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
13: तो माने या ना माने दिलदार.
14: क्रिएटिव्स टीम इवेंट्स एंड पीस नेशन यूके प्राउडली प्रेजेंट्स द विरासत टूर यूके विद द वन एंड ओनली Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
15: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
16: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
17: Search is changing.
18: Customers aren't just using Google anymore.
17: They're asking AI.
18: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
17: One business, one recommendation.
18: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
17: Will your business be the answer?
18: Or the one that got left behind?
17: The future of search has already started.
18: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
17: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
19: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक।
20: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
19: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
21: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
22: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
23: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
24: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का 1989, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca bowl today.
2: Hangama hai kyun barpa? Thodi si japil hi.
3: Aapka naya station Laika Radio Ghazals bahut jald aa raha hai.
4: Door bahut mat jaiye.
0: डेढ़ मिनट के बाद इसका मुखड़ा शुरू होता है गाने का, हमदम मेरे. द एक्चुअल टाइटल ऑफ द सॉन्ग स्टार्ट्स आफ्टर 1.5 मिनट्स.
4: कोई लूट ले रहा हमें प्यार हमारा.
0: द जीनियस ऑफ ओपी नैयर.

0: ओम शांति शशि भाई।
1: बाली ब्रह्मभट्ट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स।
0: शशि सिंह मैं अकेला अपनी धुन में

0: सबसे निराला
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
4: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a radio और like a gold आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर platform पर आपका brand चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या email sales@lykaradio.com.
5: Across London, this is Bally Brambat on Lyca Gold.

0: I hope you enjoyed the tribute to none other than the beautiful lady Padmini, 20th death anniversary. Music, C. Ramchandra, Rajendra Krishan ki lyrics. Next song from Mera Naam Joker.
1: Bali Brambat on Gold Afternoons. Like a
0: gold. Amardeep jo film thi, wo Devanand saab ke saath thi. अंग लग जा बालमा, आशा भोसले जी ने बहुत खूबसूरती से गाया. शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र की लिरिक्स.

0: book Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323. Laika Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे.
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
2: Listen to this powerful voice, Kavita Krishnamurthy, our artist of the week, who's coming to the Royal Albert Hall soon.

0: आवाज सुनते ही पता चलता है कि कितनी बुलंद और पावरफुल आवाज है जो गूंजने वाली है वेरी सून एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st of November। यस, द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति। Kavita Krishnamurthy performs live at the Royal Albert Hall on Sunday, 1st of November, brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office, exclusive radio partner, Laika Radio Network. Aur ek dusri khushkhabri hai. Sunao? Yes, of course. Yes, Jay's Entertainment brings to you Bollywood Legends live in London with Sanjay Kapoor, Aftab, Shiv Dasani, singers Amantrika and Indrani Datta, Sunday 27 September at Leicester's De Montfort Hall, exclusive radio partner Laika Radio. Ab jab main ye baat kar raha hoon, to I'm gonna bring somebody on air. And that is going to be a surprise to you. आवाज किसकी है पहचानिएगा। Ladies and gentlemen, ये आवाज पहचानिए।
1: आहा, नहीं नहीं नहीं ये बातें पुरानी। ओ कैसी बहेली है ये कैसी बहेली जिंदगानी। तमाहा रोका इसको किसने हाँ ये तो बैठा पानी। वो हो कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी।
0: वाह वाह वाह वाह, मतलब क्या एंट्री मारी आपने, मजा आ गया। दिस इज इंद्राणी दत्ता।
1: Thank you so much. Thank
0: Indrani, I understand you are very excited to go to Leicester and joining 27th of September for Jay's Entertainment. Am I right?
1: Ji haan, main bahut bahut khush hoon. This is the first time I'm going to be meeting Sanjay Kapoor ji and Aftab Shiv Dasani ji, and I will be singing with Amantrika, a wonderful singer. And I'm really, really excited.
0: And also for the first time, you will be singing at the Royal Albert... it's the Leicester's De Montfort Hall. Am I right?
1: Absolutely. It will be my first time to sing. Oh. Exactly. So thank you to Jay's Entertainment, Mr. Jay Kotak ji, jinhone, Jay Mauka diya hai, which is absolutely fantastic. Thank you so, so much.
0: I'm
1: really looking forward.
0: Yes, everybody's excited and people were raising their eyebrows when I said Indrani Datta, and everybody's quite a fan of yours anyway. So am I, and that's why Sheila and I, we are both coming to the show.
1: Oh, lovely. It will be lovely to see you both. Absolutely lovely.
0: And it'll be nice to meet Sanjay Kapoor and Aftab Shiv Dasani and Amantrika as well. And my good old buddy, that is Jay Kotak ji. Yes. Abhi, आप संजय कपूर और आफ्ताब शिव दसानी, अभी इन दोनों की फिल्में तो कितनी सारी है, सो दोनों की फिल्मों के एक एक मुखड़ा हमें सुना दीजिए जो आप गाने वाली है वहाँ पे।
1: Of course, that will be my pleasure, my honor. एक फिल्म आई थी जो संजय कपूर जी का था, वो राजा फिल्म था, और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने थे, और उन्हीं में से एक गाना हम गाने जा रहे हैं अमंत्रिका जी उनमें, एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस। नजरी मिली दिल धड़का मेरे धड़कन ने कहा लव यू राजा। नजर मिली दिल धड़का मेरे धड़क

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Of course, हमने एक birthday announce करनी थी, and it was a beautiful moment for this particular song to be dedicated to the birthday girl herself. And birthday है हमारे प्रतिबेन. Oh yes, प्रतिबेन मकेचा from Wimbledon. क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया. एंड पन्ना लखानी जी ने पिनर से मुझे बताया कि उनका बर्थडे है. सो हैप्पी बर्थडे टू प्रीति बेन. एंड आई विल प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू एंड बात करूंगा बाद में. एंड गेस व्हाट, अमन त्रिका इज कमिंग ऑन एयर टुमारो.

0: काटे नहीं कटते दिन ये रात। मैंने कहा था ना कि बहुत धमाकेदार शुरुआत होगी फॉर दिस शो बिकॉज दिस इज गोल्ड ड्राइव एंड आई एम वीर इन फॉश सैंडी शाह। सो दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम द सुपरहिट मूवी मिस्टर इंडिया इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड अलीशा चुनॉय। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात अबाउट दिस मूवी ना, आफ्टर वॉचिंग शेखर कपूर्स फैमिली मूवी मासूम, इफ यू रिमेंबर शबाना आजमी एंड नसरुद्दीन शाह, व्हाट अ लवली मूवी दैट वॉज, प्रोड्यूसर बोनी कपूर अप्रोच्ड हिम एंड ही वॉन्टेड शेखर कपूर टू मेक अनदर मूवी जो बच्चों के रिलेटेड थी। कपूर साहब ने इमिजिएटली ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड देन ही वॉज थिंकिंग यू नो, सो शेखर कपूर वॉज अ बिग बिग फैन ऑफ दीज कॉमिक बुक्स एंड ही वॉन्टेड टू मेक अ सुपर यू नो काइंड ऑफ अ सुपर हीरो मूवी। सो दैट्स वेन शेखर कपूर एंड बोनी साहब अप्रोच्ड सलीम जावेद एंड देन दे रोट द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रीन प्ले फॉर मिस्टर इंडिया एंड देन वी हैड द सुपर हिट मूवी अनिल कपूर एंड श्रीदेवी। वेल मैं तो फिल्मी हूँ तो मैं फिल्मी बात ही करूंगा। आई एम योर फिल्मी मुंडा वीर गिविंग यू कंपनी ऑल द वे टिल 7 PM एंड प्लेइंग सम धमाकेदार सॉन्ग्स, सो स्टे ट्यून्ड।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 126.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold. Leica Gold, traffic and travel.
2: This is Martin. Your travel slow on the A4020 Uxbridge Road between the A312 the Parkway and Southall Park. The A312 Church Road and Mandeville Road heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. You're slowing on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner and queuing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hangar Lane Gyratory. It's slow on the A3 West Hill westbound around South Circular coming from the one-way system. To the Tube and minor delays on the Central Line between White City and Ealing Broadway, between White City and West Rislam, between Leytonstone and Epping, and between Leytonstone and Hainault, and it's due to an earlier signalling problem. That's your latest traffic and travel.
3: Yeah, like a gold.
4: Like a gold.
5: Need anything from Tesco? How about hundreds of the Tesco products you know and love, price matched to Aldi? Helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/Aldi Price Match.
3: Like a gold.
6: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
7: નમસ્કાર, માર્ચ 2027માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. વિઝિટ મહારાજા ટૂર્સ .co.uk ઓર કોલ 07956154846.
8: हमारी रक्षक है वो.
9: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
10: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
9: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन. द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
11: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती है।
2: इसे हमेशा याद रखना।
3: काश कोई आ जाए, उन्हें समझाए।
4: Usayoni every day at 6 p.m. on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.

0: इतना तो याद है मुझे इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड रफी साहब फ्रॉम द मूवी महबूब की मेहंदी लीना चंदावरकर एंड द ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विद काका जी. वेल कहते हैं ना कि काका जी जैसा रोमांस कोई नहीं कर सकता था. आई थिंक दिस सॉन्ग इज सो सो सो स्वीट. यू नो जैसे लीना चंदावरकर शर्माती है एंड देन काका जी अपने ही अंदाज में ही सिंगिंग. आई मीन इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल. देयर आर लॉट ऑफ बर्थडेज टुडे सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू उमा आरुषि and Aishi. This is best wishes from Dilip and Shashi Patel ji. Congratulations on your 76th birthday. God bless and have a great day ahead.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 126 Indian rupees, 84 Afghani afghans, 366 Pakistani rupees, 162 Bangladeshi Taka, 436 Sri Lankan rupees, 171 Kenyan shilling, and approximately 1.32 US dollars.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan, or Bangladesh?

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: No, sorry, mate.
2: No, we don't have that part.
3: Have you tried down the road?
4: We can get it in, but it won't be for a few days.
5: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड।
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 0208574 8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: Mamster નું પાણી પૂરી અને પાણી પૂરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अजीब दास्तां है ये. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर. व्हाट अ प्यारा वाला गाना. एंड आई लव द पिक्चराइजेशन. ऑल्दो यू नो जो ब्लैक एंड वाइट एरा था, बट दैट ब्यूटिफुल यू नो जो मीना कुमारी के एक्सप्रेशंस थे, एंड देन राजकुमार का वो अंदाज, एंड देन यू नो द नादरा इज गिविंग दोज लिटिल लुक्स इन दैट मूवी. बड़ा ही अच्छा वाला गाना है ये. ऑन लाइक अ गोल्ड.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: jhoot bola, jhoot bola. Sandy Shah ne jhoot bola.
1: Yes. On Gold Drive.
0: So, maine ek statement diya tha ki कयामत से कयामत तक जूही चावला की डेब्यू मूवी थी. जूही चावला डेब्यूड विद द मूवी कयामत से कयामत तक. नाउ ये सच है या झूठ? मैसेज मी एंड लेट मी नो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच.
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
0: This one is indeed a tasty track in the vocals of Lata Mangeshkar and Manar Udas from the movie Abhiman. Amitabh.

0: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड किशोर दा, अमिताभ बच्चन एंड रेखा's ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वाज मैजिकल इन दिस सॉन्ग एंड दिस मूवी एज वेल.
1: दिस इज लाइका गोल्ड, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
0: सो this latest Laika Extras podcast is Raj Badan talks to Ruby Raza and Donnie Brasco about stepping into the role of CEO of one of Britain's largest Asian radio networks, Laika Radio Network, and his journey behind the title. In this special 5 years showcase, Raj Badan talks about the nerves and responsibilities that came with the role of CEO and the changes he wanted to bring to the organization. Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Laika Extra is here. Ye hai Laika Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट मंत्रा हॉलीडेज डॉट को डॉट यूके और कॉल 0203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra? Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24 hour line.
7: हैरो, इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान. साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
8: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
9: You have one new voice message. New message.
10: Hi Jess, it's Kate, your midwife. I just wanted to follow up on booking your flu vaccine. Flu's always pretty awful, but can be even worse when you're pregnant. Please give me a call back.
11: Flu can put both you and your baby at increased risk of severe complications, including early labour and low birth weight. But the vaccine gives you both the best protection from flu. Speak to your midwife, GP practice or pharmacist. Stay strong. Get vaccinated.
12: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
1: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: on this week's Leica Extra podcast. Watch a special profile on Raj Padden's five-year journey as the chief executive of Leica Radio Network, hosted by Ruby Raza and Donny Brasco.
14: Turning point for me was 3 months into my tenure, I met one of our brand partners, commercial partners, who is still with us today. And he said to me, he goes, Raj, the change that we've seen in Leica has never been this good. I can see where you're going. I said, just wait. I said, watch, give me another 6 months. There's something about to happen. And he's the biggest supporter now for Leica Gold.
13: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Leica Radio Network.

0: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
3: Cool Drive with Sandy Shah.

0: जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे. दिस सुपरहिट सॉन्ग फ्रॉम द सुपरहिट मूवी बेताब इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड शबीर कुमार. सो अगेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है अबाउट दिस मूवी. सो आई वॉज वॉचिंग सनी डेओल का इंटरव्यू एंड दिस वॉज सनी डेओल्स डेब्यू मूवी विद अमृता सिंह एंड अमृता सिंह की भी डेब्यू मूवी थी. सो देयर वॉज दिस वन सीन एंड दे जस्ट स्टार्टेड द शूट ऑफ दिस मूवी. सो देयर वॉज दिस वन सीन जहाँ पे सनी डेओल को अमृता सिंह को एक बहुत ही यू नो रोमांटिक सा हग देना था एंड सनी डेओल बीइंग रियली शाय ही वाज लाइक रियली रियली ऑकवर्ड एंड यू नो कुडंट डिलीवर दैट सीन. एंड धर्मेंद्र एंड धर्मपाल जी ही वाज देयर इन द सेट्स बिकॉज ऑफ कोर्स दिस वाज विजेता फिल्म्स प्रोडक्शन. सो धर्मेंद्र वाज आल्सो देयर इन द सेट एंड ही यू नो आफ्टर तीन चार टेक्स के बाद ही धर्मेंद्र साहब गॉट इरिटेटेड एंड ही सेड की कर रहे हैं पंजाबी विच यू नो लाइक पंजाबी में ही सेड की कर रहे हैं कुट के जफी पा कुड़ी नू. So I thought that was super hilarious and you know Sunny Deol and Amrita Singh were laughing about this, but I think Sunny Deol was super comfortable doing the fight scenes, but romance in the very beginning was very difficult for him. I am Veer, your filmy munda, giving you company all the way till 7 PM and playing some dhamakedar songs on Gold Drive in for Sandy Shah today. Ye ya wo. Alright, it's time for Ye Ya Wo. Now you all know that our artist of the week is Kavita Krishnamurti. So, मैंने दो गाने उनके choose किए हैं and you've got a message and let me know कि आपको कौन सा गाना सुनना है. The first song is Hawa Hawai from Mr. India and the second song is Ye Dil Sun Raha Hai from the movie Khamoshi. So, whether you want to listen to Hawa Hawai or whether you want to listen to Ye Dil Sun Raha Hai, let me know and I will play जिसको सबसे ज़्यादा votes मिले.
1: WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 126.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Gold, traffic and travel.
2: This is Martin with the travel. Delays on the M4 this evening onto the elevated section eastbound from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312 Church Road and Mandeville Road still heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. Slow on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner and you're queuing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hangar Lane directly. Slowing on the A3 West Hill northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road to the Tube, and minor delays on the central line between White City and Ealing Broadway, between White City and West Ryslop, between Leytonstone and Epping and between Leytonstone and Hinnell, and that's all down to an earlier signalling problem. And that's your latest traffic and travel.
3: Yeh hai Leica Gold, 10:35 AM.
4: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: हेलो, द वेट इज ओवर. प्रख्यात स्पाइस विलेज हवे हैरोमा खुली गयु छे. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, स्वादिष्ट कराहियो अने तंदूर माथी निकलेला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथे सौथी मोटा वेजिटेरियन मेन्यूज माथी एक अलग वेजिटेरियन किचन मा तैयार. तो फैमिली अने फ्रेंड्स ने साथे लावो अने माणो स्पाइस विलेज नो अवॉर्ड विनिंग स्वाद. आवो 124 डोमिनियन परेड, स्टेशन रोड, हैरो. स्पाइस विलेज हैरो, नाउ ओपन. खावा, मळवा अने सेलिब्रेट करवानु तमारु नवु सरनामु.
7: मा,
3: मां कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इन्विटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मां जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-228-7509
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0208426-0678।
2: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
7: लंदन्स बिगेस्ट क्लासिक्स ऑल डे, लाइका गोल्ड।

0: 1800 543 963 5757 and book your meeting. Danub 1111, Danub Properties. Danub 1111. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
3: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
1: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
5: टू बुक कॉल 0208 514 5400। Book online at Eventbrite.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410। दैट्स 8574 8410। साउथ हॉल ट्रेवल, all protected.
7: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
8: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
7: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208 767 2142.
10: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
11: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
12: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
14: Up next, Anisa Nasir with The Big Show on Leica Gold.
0: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: तौबा ये मत वाली चाल। वेल, बॉलीवुड में जिस तरह से प्रेजिंग की जाती है उसका कोई जवाब ही नहीं है। दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ मुकेश साहब एंड अनीसा जी इज इन द स्टूडियो। अब अनीसा जी आई हैं तो मैंने तो अपनी शायरी बोलनी है। अनीसा जी, ये आपके लिए, आपकी मुस्कान का जादू दिल को छू जाए, आपकी मुस्कान का जादू दिल को छू जाए, आपकी आवाज का जादू लाइका रेडियो को रोशन कर जाए।
1: बत्तियां बजा दो फिर।
0: वेल, इस शायरी के बाद और इस प्यारे वाले गाने के बाद वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय, बट यू स्टे ट्यून्ड कॉज अनीसा जी हैज सम प्यारे वाले गाने इन हर गानों का पिटारा। एंड वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय, बट हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइका गोल्ड।
2: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, कहते हैं कि देख लेते हैं अब उस बाम को आते जाते, ये भी आज़ार चला जाएगा जाते जाते। लीजिए अब बहुत जाने वाला है, जल्दी फाइनल फ्यू डेज़ हैं दिवाली स्टोरी के, तो आपको बता दूं कि आप जल्दी से इंतज़ाम कीजिए अपने टिकट्स का और पहुंच जाइए। टिकट्स मिल रहे हैं diwalistory.com पर, और फाइनल फ्यू डेज़ जैसा कि मैंने कहा टू गो टू दिवाली स्टोरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं सनातन इवेंट्स और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस एट ओवो अरीना Wembley on Sunday 27th September. Doors open at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main performance from 6:15 p.m. to 9:30 p.m. तो बंदोबस्त कर लीजिए अपने टिकट्स।
3: ये है
0: Leica Gold Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: जिन दिनों तेरी मोहब्बत से भरे होते थे, जर्द मौसम में भी हम लोग हरे होते थे। आंख की झील में क्या जहर मिला था कोई, रोज कुछ ख्वाब किनारों पे मरे होते थे। ऐसा बदनाम ना था शहर मोहब्बत पहले, उसकी गलियों में तो खोटे भी खरे होते थे। हम भी जरा खोटे खरे का हिसाब कर ले। मेरे लिए वैसे आप सभी खरे हैं माशाल्लाह से। रुखसाना अफजल जी रॉचडेल से, मनु जी, अंजुम जी, मिसेस चियांग, नौशाद जी, निमी जी, दीनी जी और गीता हर्षद जोशी जी, आप कैसे चूक गए आज। सैम शहजाद जी आप हैं रानी ऑफ द आवर। ओम प्रकाश लाल जी आप हैं राजा ऑफ द आवर। शकीला नेडा जी, मंजीत संगर जी, विजय गुडोरी जी, संध्या भावसर जी, अमिता जी, उमर जी दुबई से, तोची जी, उल्लास जी, मकबूल जी, नीलेश जी, गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, अमित पटेल जी, नाजिया शकील जी। नाजिया जी आप हमसे खफा हैं, बहुत दिनों के बाद आज आपका मैसेज आया है, क्लास लेनी पड़ेगी मुझे आपकी। कमल शिवनानी जी, दिनेश पोपट जी और कमर जी, जवाब बिल्कुल सही।
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 PM।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: When you have a better laptop like the Dell XPS powered by Intel Core, it feels better. With thin and light design, it feels smooth. With a touchscreen, it feels fast and precise. And with long-lasting battery life, it feels like non-stop energy. Yeah, that's definitely better. Built for those who want better. The Dell XPS. Built for you.
2: Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
9: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए।
10: नाकता चाहिए इतना?
8: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
11: तू का अंडो छे आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछड़ वालों ब्रेक मारे ने यार मारी मारी
8: दोस्ती। स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी। रिलीजिंग फ्राइडे 25 सितंबर। यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।
10: લંડન હાલો ગરબે ગુમવા શ્રી 27 ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપ સાથે માણો નવરાત્રી ભારતના લાઇવ બેન્ડ સાથે 10-20 ઓક્ટોબર સાંજે 7:30 થી એટ 27 પાટીદાર સેન્ટર વેમ્બલી એડલ્ટ ટિકિટ્સ £10 16-17 અને 18 ઓક્ટોબરે £15 5-10 વર્ષના બાળકોને £5 અંડર 5 ફ્રી 11 રાતનો સીઝન પાસ £100 રેડિયો પાર્ટનર લાઇકા રેડિયો નેટવર્ક 27 ગામ પાટીદાર સમાજના ગરબા એટલે બેસ્ટ बेस्ट
12: माय फ्रेंड दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है
13: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे। दिस इज लाइका गोल्ड।

0: तेरे अताब से कितनी निबाह की हमने, तेरे अताब से कितनी निबाह की हमने, ना कोई अश्क बहाया ना आह की हमने। अदम हमारी जवानी हमारी दौलत थी, बड़ी फराख दिली से तबाह की हमने।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 366.2 Pakistani rupees, 84.5 Afghan afghani, 126.8 Indian rupees, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £103.51 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: और वजाहत जी, आपका भी मैसेज हमेशा ही तरह वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी जनरस, थैंक यू सो वेरी मच। पूनी जी और तारिक राहिल जी, आपने भी सही जवाब पहुंचाए हैं मुझ तक, तो वेल डन यू। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कोई और कोशिश करेगा या नहीं करेगा।
1: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।
0: चौधरी फरीद अहमद साहब सुन तो रहे हैं, आज कोशिश क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, शायद उनकी भी समझ में नहीं आ रहा इसलिए कोशिश नहीं कर रहे। गुड इवनिंग।

0: और थीम का पर्दा खोल दिया है कुलबीर सिंह जी। आपने भी प्रतिभा जी कितना कीमे कींजी कुड़िए जवाब बिल्कुल ठीक है और मिसेस के क्या बात है एकदम बरोबर।
1: अनीसा नासिर लाइव अक्रॉस ग्रेटर लंदन विद द बिग शो। This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: माया भाई मौजवाण मा थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन UK प्रेजेंट्स भव्य डायरो माया भाई आहिर जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे
3: 27 सितंबर 2026 ना रोज वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे

0: ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये वादा करते हैं हम। और वैसे तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं, हमसे आपकी जान छूटे मुश्किल है। ख़ास तौर पर विजय गुडूरी जी, गीत आपके नाम गया और बेहद शुक्रिया संध्या भाव से अर्जी कह रही है, गाना आपके नाम। अरे बहन, अब तो जुल्फे रही नहीं, अब जितनी रही है हवा चले तो वो उड़ती भी नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूं, लेकिन बेहद शुक्रिया।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
0: जब कॉमन रहा गीतों में दिलीप सरोज जी, सलमा जी, रीटा जी, वेल डन। मीरा जी और वीना जी, नॉट सो वेरी वेल डन।
2: जब से लगन
0: लगाई रे उम्र भर।

0: Breaker Radio Network, broadcasting across Greater London.
1: अनीसा नासिर वेरी मच हाजिर और मेरी और आपकी मुलाकात पूरे 10 बजे तक जारी और सारी रहने वाली प्रोग्राम के इस हिस्से में पंजाबी तड़का भी होगा और उसके साथ साथ उल्टा पुल्टा भी चंद अल्फाज में आप तक पहुंचाऊंगी और आपसे बुझवाना चाहूंगी कि ये कौन सा गीत है। पहले तो ये चंद लाइनें जिसका भी दिल करे ना भाई वो अपने नाम कर ले, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे तो ज़बरदस्त तरीके से लड़ गई। क्या खूब किसी ने कहा कि अपनी तन्हाई से वहशत नहीं होती मुझको, अपनी तन्हाई से वहशत नहीं होती मुझको, क्या अजब शय हूँ, मोहब्बत नहीं होती मुझको। ये भी बदनसीबी होती है जिसको मोहब्बत नहीं हो पाती। मैं तो ऐसा मानती हूँ, मेरे साथ आपका एग्री करना ज़रूरी नहीं है। अपनी तन्हाई से वहशत नहीं होती मुझको, हाँ रोज़ रोज़ नहीं होनी चाहिए, एक बंदे या एक बंदी से होनी चाहिए। अपनी तन्हाई से वहशत नहीं होती मुझको, क्या अजब शय हूँ, मोहब्बत नहीं होती मुझको। याद आती नहीं बीती हुई बातें दिल को, याद करने की ज़रूरत नहीं होती मुझको। दिल का जज्बात से अब कोई ताल्लुक ही नहीं, हद तो ये हो गई नफरत नहीं होती मुझको।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: £1 in British sterling can get you up to 126.6 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile app की सहूलत से फायदा उठाइए. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: और लीजिए अब बूझने की कोशिश कीजिए कौन सा गीत है. चले आए भटके हुए साए, टूटे हुए सपने। एक दफा फिर से दोहरा देती हूं, फिर चले आए भटके हुए साए, टूटे हुए सपने।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required. Spend £25 on qualifying purchases in-store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
0: This is Anisa Nasir with The Big Show.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: हमारी रक्षक है वो।
5: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
6: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
5: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साफो ट्रेवल।
3: battle protected.
10: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
11: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
10: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
13: Four beers, please, garçon!
12: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: Like a Goal, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoal.com.
15: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। मैं आपको सही बताऊं, भूखे पेट तो इश्क भी नहीं होता। जब तक पेट भरा हो तभी इश्क भी अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाह रही थी कि कभी बेटाइमा जिन्हों कहते नहीं, कभी हम उल्टे पुल्टे आवाज़ में कहते थे माँ से कि भूख लग रही, तो कहती थी ये कौन सा टाइम है भूख का। तो मतलब भूख का भी टाइम होता है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कभी शो के दौरान तो खाती नहीं हूँ, हरगिज़ नहीं खाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं जैसे ही मैं काम पे एंटर हुई हूँ ना, सारा दिन घर पे थी, काम करती रही इधर उधर, तब खाने का ख्याल नहीं आया। और जैसे ही मैं बिल्डिंग में घुसी हूँ मुझे लगा कि मुझे भूख लगी है। और अब आप यकीन करेंगे मैं रेडियो वाली से पीनट्स मांग के खा रही हूँ।
1: देखो आप इतनी मीठी हो तो कभी कभी नमकीन भी डालना चाहिए ना मिठास में।
0: पता नहीं ये लड़की कहाँ से बातें सीखती है। राज इज इन माय स्टूडियो।
1: देखो तारीफ करो तो राज, तारीफ ना करो तो राज। भाई बंदा करे तो करे,
0: मैं तेरी चुगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा।
1: मुझे ये भी पता है कि आप कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे।
0: राज आई होप यू लिसनिंग। बहुत शुक्रिया, पीनट्स का मजा आया रियली। वैसे हमेशा कहते हैं ना कि चीज में स्वाद नहीं होता, स्वाद आपकी भूख में होता है।
1: नहीं स्वाद में भूख वो वाला ठीक है।
0: हाँ, तुमने दिया इसलिए। हाँ
1: हाँ
0: चलो ठीक है, मान लेते हैं। मोहब्बत से दे कोई खाने को या कोई भी पापीने को, चाय बना दे, कॉफी बना दे, वो सब मोहब्बत से और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। बहुत शुक्रिया, लव यू टू। और लीजिए भी ये गीत आप तक पहुंचाया डेरी वैली वालों ने।
2: Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Kya milega usse, wo kyun hame milwayega? Kaun se waqt ka kehte ho, khuda layega? Kya milega usse, wo kyun hame milwayega? Kaun se waqt ka kehte ho, khuda layega? मैं तो रह लूंगा तेरे दिल में किसी और के साथ, रब ना करे मैं तो उसको ठुड्डे मार के पहले निकालूंगी। मुतमई कितना हूँ पानी के हवाले करके, जैसे ये फूल तेरी नाव से टकराएगा। मैं तो रह लूंगा तेरे दिल में किसी और के साथ, तू मगर दोनों में इंसाफ ना कर पाएगा।
2: ये है Like a gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact kijiyega Southall Travel ko aaj hi on 0208-574-8410. Southall Travel is HR protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Anisa Nasir on Like a Gold, Greater London.

0: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM.
1: ये है लाइक अ गोल्ड,
2: लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
3: और आपको बता दूं दोस्तों, पॉडकास्ट की ये एपिसोड जो है वो मिस करने वाली नहीं है. 35th एपिसोड है, टाइटल है इसका राज बदन और 5 years शो केस. राज बदन 5 years शो केस होस्टेड बाय रूबी राजा एंड टोनी ब्रास्को. राज विल बी टॉकिंग टू रूबी राजा एंड टोनी ब्रास्को अबाउट स्टेपिंग into the role of CEO of one of Britain's largest Asian radio networks, the Laika Radio Network, and his journey behind the title. In this special 5-year showcase, Raj Bedin talks about the nerves, the responsibilities that came with the role of CEO and the changes he wanted to bring to the organization. Laika Extra podcasts available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms. So, ye bhuliyega mat zarur देखिएगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ऑनेस्टली मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आई वाज सो राइट. यू वुड लव टू नो अबाउट हिज जर्नी, हिज अचीवमेंट्स, हिज लव फॉर हिज टीम एंड हिज टीम्स लव फॉर हिम.
2: एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अ निशा नेसे विद द बिग शो.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: आपकी मासूम फरमाइशों पर हैरान हूँ मैं, परेशान हरगिज नहीं हूँ। निमी जी आपके नाम। चला जाता है मौका हाथ से मैं तब समझती हूँ, चला जाता है मौका हाथ से मैं तब समझती हूँ। बहुत समझाया लोगों ने मगर मैं कब समझती हूँ। मेरे अपनों को लगता है समझ ही कुछ नहीं मुझको, मेरे अपनों को लगता है, जो शायद अभी सुन भी रहे हो, मेरे अपनों को लगता है समझ ही कुछ नहीं मुझको, मेरे प्यारों को क्या मालूम अब मैं सब समझती हूँ। समझती थी बहुत पहले ही मैं उनकी बहुत बातें मगर ऐसी हैं जो मैं अब समझती हूँ। अंजुम जी बहुत प्यारी चीज़ आपने भिजवाई है। हम बात कर रहे थे मोहब्बत की, तो आपने कहा कि नज़र का फ़र्क होता है हुस्न का नहीं। मैं मानती हूँ इस बात को, महबूब जिसका भी हो लाजवाब होता है वो, इसलिए कि किसी के लिए वो आम चेहरा और किसी के लिए पूरी कायनात बन जाता है। हुस्न आंखों में नहीं दिल के एहसास में होता है, जब दिल मान ले तो ऐब भी हुनर लगते हैं। महबूब में कमी नहीं होती, बस देखने का जाविया अलग होता है। और कहते हैं मोहब्बत खुद ही हुस्न को जन्म देती है। क्या बात है, बल्कि क्या ही बात है। और मैं तो परेशान हो रही थी जहीर साहब, ना आपका कोई मैसेज आया ना आपके किसी बकरी या बकरे का, लेकिन अभी स्क्रीन पर आपका नाम आया। मैसेज मैं अभी पढ़ नहीं पाई हूँ, लेकिन ज़रूर पढ़कर उसे शामिल करूँगी। प्रतिभा जी कहती हैं, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी वो चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला, हाय हाय वो ना तन लेके लौटा ना मन लेके लौटा।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 366.1 Pakistani rupees, 84.2 Afghani, 126.8 Indian rupees, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £103.51 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. Leica Gold.
3: Punjabi Torka with Anisa.

0: मैं भी चुप सा वो भी चुप सी, मैं भी चुप सा वो भी चुप सी, ना हसे ना रोए, ना कुछ पुजिया ना कुछ दसिया, ना कुछ पुछिया ना कुछ दसिया, विछड़ गए फिर दोए। और आप जो फरमा रहे हैं ना जनाब कमल शिवनानी जी, जो कि राजा ऑफ द आवर हैं, कहते हैं मत पूछिए फुर्सत की घड़ियां हम कैसे गुजारा करते हैं, होंठों से छुआ कर मूंगफली माशूक को मारा करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो मैंने मांग कर मूंगफली खाई है यानी पीनट्स, उसके छिलके नहीं थे। और नंबर दो, माशूक भी मेरे पास स्टूडियो में नहीं है, तो वो छिलके मारने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन शेर आपका मज़े का है।
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. Like a god. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place.
3: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963 5757 and book your meeting.

0: रहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, रहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, ये और बात तेरी आरजू न रास आई। ये सानेहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, कि उसने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। दिले फसुरदा में फिर धड़कनों का शोर उठा, दिले फसुरदा में फिर धड़कनों का शोर उठा, ये बैठे बैठे मुझे किन दिनों की याद आई। ये था हमारा आज का मिस्ट्री गीत एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल गीत। मैं नहीं कह रही, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई हमारी बेप्सी राय जी लाल बिंदी वाली, बहुत दिनों से हम आपको याद कर रहे थे मन ही मन में, और एक दो दिन से आपके हेलोज आना शुरू हो गए, दिल खुश हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, आपके नाम करते हैं इस गीत को। और ज़हीर खान जी आपकी प्यारी, आपको कोई गलत फहमी ना हो जाए, सबको प्यारी उनकी बकरी का नाम है, उसको बेचारी को चोट लगी और उसकी तीमारदारी में लगे थे, क्या बात है। मेरी तरफ से बहुत पूछिएगा अपनी बकरी को, अपनी प्यारी को मेरा मतलब है, और अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स की खिदमत में सेवा में मैं पूरे 10 बजे तक हाजिर रहने वाली हूँ। आप भी रेडियो से हरगिज़ हरगिज़ दूर मत जाइएगा, वरना बहुत सारे प्यारे प्यारे फरमाइशी गीत जो है वो आप मिस कर जाएंगे।
1: Like a Radio 90s. Like a Radio Punjabi. Like a Gold 2. Now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.
2: Aur kuch der theher.

0: शहर से रोशनी शब से वही जादू निकल आए, शहर से रोशनी शब से वही जादू निकल आए, पुरानी शॉल खोलूं और तेरी खुशबू निकल आए। उसी खातिर ही तो मैं छानती हूँ आस का जंगल, उसी खातिर ही तो मैं छानती हूँ आस का जंगल, मैं जिसके चश्म चूमूं काश वो आहू निकल आए। अब आप ही बताइए, गीत क्या सिर्फ और सिर्फ किसी एक की पसंद हो सकता है? नहीं ना।
1: Elisa Nasir, live across Greater London with the Big Show. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 126.6 Indian rupees. Or yaad rahe, do not forget to exchange in branch, online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required. Spend £25 on qualifying purchases in store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
1: Elisa Nasir with the Big Show. Weeknights from 7 p.m. Like a gold. This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22 287509।
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
6: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
7: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
6: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
6: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: वैसे तो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन शायर का कह रहा है कि अब तुम हमारे हाथ को आए हो थामने, अब तुम हमारे हाथ को आए हो थामने, अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। जिंदा हूँ एक ख्वाब और एक आस के तुफैल, वरना तो इस हयात में कुछ भी नहीं बचा। पद्मश्री डॉक्टर कविता कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम जी, हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और आपको बता दूं कि आ रही हैं द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज अ दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: वैसे तो इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी जनाब सतीश जी आपने, लेकिन आपके नाम तो गया सो गया ही, ये गीत मैं नाम करना चाहूंगी कलानिधि देसाई जी आपके, आपके बहुत प्यारे मैसेज के लिए। काश के मैं इसे फ्रेम करवा के रख सकूं, इसलिए नहीं कि उसमें आपने मेरी तारीफ की है, उसमें जिस खूबसूरती से आपने अपनी फीलिंग्स बताई हैं, ऑनेस्टली बेहद शुक्रिया, थैंक यू। और ये चंद लाइनें भी आपकी नजर, उधर जुल्फों में कंघी हो रही है खम निकलता है, उधर जुल्फों में कंघी हो रही है खम निकलता है, इधर खिंच खिंच के रग रग से हमारा दम निकलता है। इलाही खैर हो, उलझन में उलझन पड़ती जाती है, न उनका खम निकलता है न अपना दम निकलता है।
0: लाइका गोल्ड,
2: लीजिए भी एक मैसेज आप तक पहुंचा दें कि कैच कीजिए द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज आल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 to 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ रहेंगे।
0: Anisa Nasir live across Greater London with the Big Show. Hubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: You sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
6: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
5: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
6: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
5: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.

0: क्या बात है हिमा जी, आपके फेवरेट गीत की, और इस गीत को प्रतिभा जी ने भी बहुत एंजॉय किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये गीत। तो भाई, दो वोट तो हमारे हो गए और कुछ मैसेजेस और भी आए हैं, सभी का शुक्रिया। रानी जी स्लाव में सुन रही हैं, कह रही नहीं नहीं नहीं नहीं, आज मैं स्लाव में नहीं, कहीं और हूँ। तो चलो, मैंने कौन सा चाय पीने आना है, आप कहीं भी सुनो, बस दिल से सुनो। कहती दरअसल ना, देर से सुनना शुरू किया, बाहर चली गई थी खाने के लिए। घर में खाना नहीं बना था क्या आज? आज मैं जितना खाने की बातें अवॉइड करना चाह रही हूँ उतना ही सब जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तक कि अमीन मोहम्मद साहब ने मज़ेदार किस्म की वेजिटेबल्स और साथ चपातियों की मुझे तस्वीर भी भिजवा दी, और मैं उन दोनों तस्वीरों को, एक तस्वीर में दोनों चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों को खा जाने वाली नज़रों से देख रही हूँ। बिस्मिल्लाह करें अमीन साहब, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपने कह दिया, मेरी दावत हो गई।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 126.8 Indian rupees, 84.3 Afghani, 366.1 Pakistani rupees, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £103.51 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: नी जी और वो सभी जो थ्रू आउट द शो मेरा साथ निभाते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, नवाजिश करम शुक्रिया, मेहरबानी। ये टाइम होता है जब शुभ रात्रि गुड नाइट के मैसेजेस आने लगते हैं। विजय जी, आपने कहा मैंने बहुत इन्जॉय किया ज़िंदगी में, तो सभी प्यार किया करते हैं। लॉलीवुड के तहत जो हम एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं आपको, और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि कोई शक ही नहीं है कि किस कदर वो प्यारा गीत है, लेकिन क्या है कि बार बार कुछ गीत ही सुने और सुनवाए जाते हैं, क्योंकि आप फरमाइश करते हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे गीत हैं जनाब मेहदी हसन साहब के गाए हुए जो बहुत कम कम लोगों तक पहुँचे हैं, और वो भी बेइंतहा, जिसको कहते हैं ना कि दिल में खुब जाने वाली शायरी और धुनें हैं, तो उन्हीं में से आज एक मैंने चुना है। उम्मीद करती हूँ कि आप उसे पसंद फरमाएंगे।
2: ये है
3: Leica Gold,
1: London's biggest classics all day. This is Leica Gold
4: from Lollywood with love with Anissa.

0: ये दर्द भरा गीत हमने लिया था फिल्म दर्द से। गाने वाली आवाज़ जनाब मेहदी हसन साहब की। कहते हैं फिर यूं हुआ कि बात जुदाई तक आ गई, फिर यूं हुआ कि बात जुदाई तक आ गई, खुद को तेरे मिजाज में ढाला नहीं गया, तूने कहा तो तेरी तमन्ना भी छोड़ दी, तूने कहा तो तेरी तमन्ना भी छोड़ दी, तेरी किसी भी बात को टाला नहीं गया। लीजिए भाई, अब वक्त के हुक्म को भी टाला नहीं जा सकता, जिसका इशारा है कि अनीसा जी इज द टाइम टू किसको। जी हाँ किसको, जाऊंगी तो कल आऊंगी ना, तो दोबारा जाने के लिए आने के लिए आज जाना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट का चुना हुआ म्यूजिक एंजॉय कीजिएगा और ब्रेकफास्ट शो लेकर यहाँ ग्रेटर लंदन के लिए हमारी काजल जी हाजिर हो जाएंगी और हमारे पूरे नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स पर सब अपना अपना फ़र्ज अदा करने के लिए सारा दिन आपकी खिदमत में हाजिर और नाजिर रहेंगे। एक दफा फिर से दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया मेरा साथ निभाने के लिए। आखिरी दो गीतों को एंजॉय कीजिए, मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: This is Anisa Nasir with the big show. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Hamari rakshak hai wo.
3: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
4: Mujhe ye jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai? Kaun kar raha hai ye?
3: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in cinemas Friday 25th September. For UK release details follow Bakrania Media on Instagram.
5: Search is changing.
6: Customers aren't just using Google anymore.
5: They're asking AI.
6: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
5: One business, one recommendation.
6: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
5: Will your business be the answer?
6: Or the one that got left behind?
5: The future of search has already started.
6: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
5: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
7: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
3: टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
12: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
13: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
14: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Like a Gold.
15: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइक अ गोल्ड रेडियो, लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Like a gold. One performer.
1: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
1: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11, 11.
3: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.

0: दुखियों की नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको गगन से उतारे। बन बन बन मेरे जैसा बन, इस जीवन का यही है जतन साला, यही है जतन।
2: अरे गम की आग बुझाना है तो हमसे सीखो या

0: भोले वाले ललुआ भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
2: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते है वार।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, धरेगा विदेशी बाबू बहिया तिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम कसम।

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
2: Oh, terrible weather.
1: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
3: See ya, good luck with the interview.
2: Thank you, bye.
1: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साफो ट्रेवल at all protected.
6: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th. Advertise your business on Leica Radio Network, covering Greater London, the Midlands, Greater Manchester and West Yorkshire. Call 0207 132 1458 or email sales@leicamedia.co.uk.
7: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।